0: अलावा शोर नहीं, शोर नहीं, शोर शोर।
1: पवन करे शोर, ठीक है?
2: मैं आपको ठीक बोलने की मेरी हिम्मत कर सारे आके मार देंगे मुझे।